सतगुरु होए दयाल सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चोरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद चढ़ती कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: CFRC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 3811-905-965-6311. तो भुल्यो ना मुस्कुराना, हासे आबाद रखियो, रोशन दा लै सवेरा फिर मिलांगे, याद रखियो, लव यू ऑल, जिंदगी जिंदाबाद, मिलदे हैं कल नूं इसे वेले इसे समय, ते तद तक गुड नाइट, सत श्री अकाल।

0: ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
1: कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नु पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नु कॉल करो
0: 416-717-2929
1: 416-717-2929। कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
2: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
3: लै आपां हुणे करदे आं संधू साहब नाल गल ते करदे आं मसले दा हल।
2: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट दे जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640।
4: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करां
5: मैं? सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा, मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
7: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
5: कॉल करो जेएन गैरी नू
7: 905-459-5533
5: 905-459-5533 ते
7: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
8: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੀਟਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,
9: ਡਾਈਨਿੰਗ, ਟੇਕ ਆਊਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਲਾਈਵ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
8: ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ।
9: ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 4025 ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ। 647-338-9172 ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 6473389172।
10: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 905-790-0560, 6 Marconi Court, Bolton, 905-951-9394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-335-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: sun, jump our sons, grow our sons, happy sons, not the horsey be sons, bole, sonny hall, sassy a car.
1: मम्मी पापा दे वीजे लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होराने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: नहीं है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे 70,000 डॉलर से, आपको फायदा नहीं नहीं नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, आपको अच्छा फायदा है। अगर आप मैरिड है, मैरिड विद किड्स है, ये रिटायर्ड कपल है, यंग कपल है, अच्छा बेनिफिट है। लाइक तब मान के चले जो लाइक फैमिली ऑफ फाइव, उनको 100,000 डॉलर की फंडिंग जाती है फैमिली ऑफ फाइव को, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, साल से कोर्स करते हैं,
1: ठीक है
0: आपके खाते में आते हैं, हमारे खाते में तो आते नहीं है,
1: जी।
0: और ज्यादा पोर्शन 50,000 तो ग्रांट ही ना उसमें से।
1: अच्छा सारांश, जैसे अब लोन तो पहले ही बहुत होता है कईयों के पे, है ना, सो क्या ये
0: हाँ जी,
1: पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही ले ली जाए, ऐसे है कुछ?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप मान के चले हमारे 20% क्लाइंट ग्रांट से खुश जाते हैं, देयर हैप्पी विद ग्रांट, हमें लोन चाहिए ही नहीं।
1: अच्छा
0: बट लाइक ज्यादातर जब लोग ऑफिस आते हैं लोन भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर फैमिली ऑफ थ्री है, उनको 60,000 डॉलर की फंडिंग मिल जाती है, उसमें से 30,000 तो ग्रांट हो गया, जो 30,000 लोन हुआ उसका क्या सीन है कि आपने वो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। नंबर वन, कैसा लोन है, जो ऐसा कौन सा लोन है जो आप 1.5 साल बाद लौटाएंगे? ओके, लौटाना स्टार्ट करेंगे, 10 साल की किस्तें बन जाती है, 10 साल कम है, 14.5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हम उसको, और 14.5 साल तक, और शुरू में ब्याज क्या है, 0%।
1: अच्छा,
0: डेढ़
1: वो
0: साल बाद ब्याज क्या है, 2.5%।
1: लोन डेफर भी हो जाएगा अगर हम नहीं पे कर सक रहे, कोई जैसे जॉब नहीं
0: बिल्कुल
1: लगी,
0: जी,
1: पैसे नहीं है हमारे पास, तो वो डेफर हो जाएगा, इनकी आगे चला
0: डेफर भी
1: जाएगा,
0: हो
1: हम
0: जाता है
1: कर सकते
0: फिर।
1: हैं। अच्छा ठीक है,
0: बिल्कुल जी, ये चीज है। और इसमें मतलब ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं कि आपने जॉब ही करनी है, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है इस फील्ड में करने, कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जितने डाउट है उसमें कॉल करें, ऑफिस आए, जितने केस देखने देखें, जो लोग कर रहे हैं वो मैं फोन करते हैं, सर सेकंड में एनरोल करा दो, जो लोग नहीं करते वो क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। मतलब टाइम कमी रह गया है आपको, उसके बाद फायदा नहीं है, आज ही फायदा है। कोई भी आपकी एज लिमिट इसमें मैटर नहीं करती, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, आपको अच्छा बेनिफिट है। 2 से 3 घंटे क्लासेस लगानी है फोन पे, सर और क्या करना है आपने, तो
1: तो
0: कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
1: जो फीस है आपकी, वो आप पहले लेते हो कि बाद में लेते हो?
0: हम बाद में लेते हैं फीस अपनी, जैसे कल भी अराउंड 6 बंदों का अप्रूवल आया जिनके खाते में फंडिंग गिरी है,
1: ठीक है,
0: उन्होंने ज्वाइन करा था मई बैच में, हमें मई वाले बैच में, तो उनका लाइक जुलाई आ गया, तो मतलब उनका फंडिंग गिरी उनके खाते में, तो उतना टाइम लग ही जाता है, 30 से 60 दिन तक। तो अब 6 महीने से हम हमारे ऑफिस से फोन गए, अब वो हमें हमारी फीस दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं, 199 या 499 डॉलर, डिपेंडिंग ऑन कोर्स, नॉट कमीशन, नॉट फंडिंग, नॉट नथिंग। मेरे को लेने जाने
1: अच्छा,
0: अपनी
1: जो
0: फंडिंग से,
1: ये आप बता रहे हो
0: मेरे को कोई लालच
1: इतनी
0: नहीं
1: ही
0: है।
1: फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं है? कई बार बाद में कहते हैं अब ये भी है जी, ऐसे तो नहीं है कुछ?
0: देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं सर किसी और एजेंट पे गए थे, उसने 3500 रुपए मांगा। कुछ ऐसे भी कहते हैं आगे कि पहले एनरोल कर लिया उसके बाद पैसे मांग लिए, $1,000 $2,000। मतलब मैं हैरान हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कितनी चलाकी करते हैं। हमें जो चलाकी है हमें आती नहीं, हमें करनी है, हम ठाकर कर रिश्ते से काम करते हैं, पहले क्लाइंट आता है, फिर अपने माता पिता को लेके आता है, फिर पड़ोसी को लेके आता है, ऐसे ही चलता रहता है।
1: ठीक
0: मतलब
1: है,
0: काम है ना, हम रिश्ते से काम करेंगे, आगे बढ़ जाते धीरे धीरे।
1: नंबर दें।
0: 199 या 499 फीस है हमारी, जैसे काम होने के बाद देनी है। नंबर नोट करें, कॉल करें, ऑफिस आए, टाइम कम रह गया है। गवर्नमेंट जब इतना पैसा बाहर फॉरन एड इसी चीज पर लगा देती है, तो गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है, मिस ना करें, कॉल करें। 437-264-3175, 437-264-3175, फिर से कॉल करें जी, फिर से नोट करें नंबर, 437-264-3175, 437-264-3175। कॉल करें एस्टिमेट ले, ऑफिस आए, 437-264-3175।
1: जी थैंक यू सनाश, ते नंबर मैं एक बार फिर दे दिनी हाँ, 437-264-3175 ते तुसी गलबात सराशना कर सकते हो, ते ग्रांट दा फायदा चुको, एजुकेशन लो, वधिया रहोगे जी।

0: हाँ जी सर, की हाल चाल
1: जी? सत श्री अकाल, कैसी हैं आप
0: जी? सर बहुत अच्छे हैं, थोड़ा शॉर्ट रखिए प्लीज। हाँ जी
1: बिल्कुल, शॉर्ट ये कि कल का मैच बड़ा जबरदस्त था, पोर्चुगीज और क्रोशिया का, और ऐसे मैचेस बहुत कम देखने मिलते हैं फेस टू फेस विद मैन ईटिंग टाइगर। अब जो होगा तो फिर कनाडा और मोरक्को का होगा मुकाबला
0: जी, कल है मुझे लगा।
1: बड़ा सख्त है
0: कल है
1: जी जी जी जी कल है, उसके ऊपर सबकी नजर है, बाकी ये छोटे मोटे तो चलते रहेंगे, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को समझने वाले। बहरहाल शॉर्ट बिल्कुल, टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा अपना वक्त दिया। कीमती नुमाया हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, नुमाया बोलते मोर क्लियरिटी से, यानी आसानी से नजर आना। नुमाया हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चा है तेरे बारीक बीनों में। शुक्रिया बहुत बहुत
0: जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते बिल्कुल जी, ते बड़ी वधिया गलबात करके जाते हैं। लो जी आप हूँ लेंदे हाँ राणा भाजी नूं, ते राणा भाजी साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, ते इन्हां दी कॉल लैंदे हां। जी भाजी की हाल चाल जी?
2: थैंक यू सो मच पंडित, तुहानू ते अपने सारे लिस्टर्स नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सो जिद्दां आपां RDSP दी हमेशा गल करदे, रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान, जिहदे अंडर की है फैडरल गवर्नमेंट वालों $90,000 तक की ग्रांट दी जा रही है, जो भी लोग जिन्हों की एज 59 साल तो घट है फिजिकली या मेंटली डिसेबल ने, तो उन्होंने को दो चीजा होनी चाहिए, एक तो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट, एंड सैकेंडली वैलिड जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि पहला सिर्फ जी ग्रांट सी प्रोवाइड की जाती थी जो लोग इतने PR या सिटीजन है, पर बाद चो गवर्नमेंट ने जो है चेंजेस की, जो लोग इतने पक्के नहीं भी है, अगर तुम्हारे कोई सोशल इंश्योरेंस नंबर वैलिड हैगा, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट हैगा, तो आप सारिया जो ग्रांट्स ने ले सकते। कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000, वैबसाइट है punjabinsurance.ca, ते नाल ही पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कीतियां ने, जिन्हां बच्चों की एज 18 साल तो घट है एंड पेरेंट्स को डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट है, तो $3,480 जो है गवर्नमेंट वालों एक सैपरेट जो है बच्चों जो दिता जा रहा है, पहला यह अमाउंट काफी घट हों, सो कह लिया जाए $290 जो हर महीने जिन्हें भी स्पेशल नीड वाले बच्चे ने उन्होंने पेरेंट्स को मिल सकता है, डिपेंड करता है अगर उन्होंने इनकम $82,000 तो घट होनी चाहिए है, जिन्हों की उम्र 18 साल तो अबव है, सो उन्होंने पहला $200 हर महीने आता सी, साल का $2,400, हुण गवर्नमेंट ने जो है $2,450 करते जुलाई महीने तो, हुण $205 के करीब जो हर महीने उन्होंने आया करेगा। सो तुम कॉल करने सारे बेनीफिट्स लिए कि बेनीफिट्स वर्क करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिहड़े लोग डिसेबल हैगे ने फिजिकली या मेंटली, उन्होंने फ्यूचर लिए पैसा देना चाहती है, तो तुसी कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000, वैबसाइट है punjabinsurance.ca, एंड जिन्होंने को डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं है, सो कि आप अपलाई करना है, तुम मैं कॉल करना है एंड आप हरेक स्टैप से गाइड करा, ताकि मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट तो बेनीफिट ले सको। नंबर टू रीच पंजाब इंश्योरेंस 416-910-9000 416-910-9000, वैबसाइट है punjabinsurance.ca। थैंक यू सो मच भैन
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। ते लो जी एक नंबर होर लै लो तुसी, एह हैगा एक बार फिर स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज का नंबर थानू दे दिया, वधिया तुसी अपने गड्डियां दी डेंटिंग पेंटिंग ठीक करवानी है ना, 4 लोकेशन तो सर्व करदे आ, बड़ी वधिया सर्विस थानू प्रोवाइड करदे आ जी, 905-874-9978 ते गलबात हो सकती है, 9058749878 ते गलबात करनी है, ते इहदे नाल नाल तुसी एक बार फिर ग्रोसरी का नंबर लै लो, वधिया ग्रोसरी करनी है 2898010566 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
3: ਭੈਣ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਦਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ SGPC ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ 90+ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ VIP ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
0: ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ।
3: ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਰ ਨੀ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 93 ਈਅਰ ਓਲਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਮਦਰ 90 ਆ, ਰੇੜੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ।
0: ਸ਼ਰਧਾ
3: ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਨੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
4: ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੂਡ
0: 6477652340 647 65243 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना

0: Brampton. या फिर तीसरी लोकेशन 9985 Macvin Drive, Unit 9, Brampton, Indian Fruitland. ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road, Brampton. वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland. 905-456-9900.
1: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers.
0: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ. इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर. तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए. इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054 58 6

कैसे कैसे गीत बुग्गा साहब दे आ, और मैं समझदा कि बुग्गा साहब का प्रोग्राम बनाइए इत्थे ते तुहानू सारयां नू सुणिया करो जिहड़े ना पुराने गीत हुंदे आ वीर मेरे उन्हां दा साथ देना बड़ा जरूरी है। ये इहो जिहे आर्टिस्ट आ जिन्हां ने संगीत नू जिंदा रखिया, इहो जिहे आर्टिस्ट आ जिन्हां ने पंजाबी कम्यूनिटी कह लो पंजाबी बोली नू जिंदा रखिया, नहीं तो अजकल जिदा दे गीत आते हैं ना रह ही रब दा ना इश्क इश्क इश्क किसे दा नहीं होया किते मूह ना लावी ते फिर रातां नू उठ उठ हैं एहो जे गीत कौन गा सकदा बई। इको ही वीर आ मेरा सतविंदर बुग्गा बावी बाजी।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हां जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
4: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
4: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी, मिल जानगियां?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
5: 32-55-80 98
4: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
5: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828 905-450-2828
2: This is AM 530, CHLO AM.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vich Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
4: ना करें। अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ
6: ਆਜ
7: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
6: ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ
7: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ
8: ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ
7: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
9: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ।

0: लवली जी लवली च पढ़ दी पीयूष जंट पढ़दा वे मैं लवली जी लवली च हवे मैं लवली जी लवली च पढ़ दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।
1: मित्रां दे जंक्शन ते
2: ओ केड़े जंक्शन ते
3: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
1: रात लगियां महफलां रे
3: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-449-4240। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है,

सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। यूं छुप ना सकेगा पर

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416 453 3381 ते 416 457

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे हजारा लोग आते ने ते हजारा ही जाते ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहते ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, तो फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हाँ, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओथे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7।

बात है, प्रोग्राम है पंजाबी दा। मैं कहण लग्या सीगा ते बहुत ही गर्मा गर्म प्रोग्राम, पर हुण पता नहीं लगता जी मैं प्रोग्राम गर्मा गर्म पेश कर दिता। अगे यार कड़ाके दी गर्मी है, तुसीं कहोगे नवी यार पहला 35 डिग्री सी, तुसीं प्रोग्राम इन्ना गर्म गर्म करता होना है, लगता जिवें कि 50 डिग्री टैंपरेचर। सो कोई ना प्रोग्राम थोड़ा ठंडा रखते हैं तो देखते हैं कि बनता।